0: स्कूलको दरबरङ तरङ एमएस दरबरकी स्कूलको क्याप्टन क्याप्टन ग जिम्मा वर बडवान अद क्याप्टन ग मगाम अन्नंग एदरवरको वर गेन मसक तक कोरान अलगन मेंग हुरवे स्कूलको क्याप्टन की रयान बिन मुसद क्याप्टन ना बदल को वाक दक्कालानी अशड्डी ग दरबर आयशत फिरशा फारिश
1: हुरवे स्कूल के ग्रेड आशय के दरिवर आयशत फिरशा फारिश मिहार में बदल कोलनी हुरवे स्कूल के कैप्टन रायन बिन मुसद रायन वरबोड़ा मरहा पाएंगे
2: शुक्रिया
1: रायन ते मिहार स्कूल कैप्टन कोयरा को रायन स्कूल कैप्टन का वांग उम्मीद करी
2: मैं कोरिन स्कूल के इस मगाम तक अति बिदारिवर फेनी एको दिन नमोना एक गतु बेलिंग आदि एको दिन हिदुमत तब वेस्वेनी एही साबन स्कूल दम मिफद हिदुमत एको दिन उनके शाहुगोरे कांगु फेदुनु
1: एम विमल रैन स्कूल कैप्टन के एम में मुहिम दौर की कोबा
2: स्कूल कैप्टन के एम में मुहिम दौर की दारिवरों ने रगलो नमूना अध्यक्षुमा हुरिया दारिवरों के मेदुगा एकुएर कमा एब्बा वंत कंग गायम करूं
1: रैन तिबुनी कोता स्कूल के हैं को देना गुरुम बधे करने की ने
2: एम में इसका मेद देनी एम में का आडो हां आदि कम में कुछ जकी विस मुहिम में कुछ जकं एहसास को दी रीत को मुआमले को गुरुम वर्गद करूं मसक करूं ए रायन कुरा कम की
1: स्कूल कैप्टन का भी मस्कूल के वाले किन खंतों का उड़न जहेनु अधिक ये वंब इस वक्त बैनु माने किने हो रहा कम का वक्त उस करने
2: क्यों माँ एवरा स्कूल के जिम्मा तब इस कुरिया गेंदे हो में कि बाय फार उधर को कम हो रहा कम का इस एवरा का वक्त देवे तो बनो स्कूल कम कम को शामिल हुए रागल नतीजा वागुत बहाल आने बड़ा इसकन देंगे है कंता मिसाल का टेस्ट तक नुवत हादेंगे फिलाव वाला तक बड़ा इसकन दिफ ऐच्छे कुरिया गिनाऊं ए दुआ कुरंगन ना बड़ा मुहिम कंका में वागुत देवने गे इन्ना ना बाप्पा बुना इन तावले विसादाव
1: कम्मे कुछ जकावस केवम का वारा गिना बाय के हिवरु दे बने रायर ना कम्बे के फराते में बड़ा हिवरु दे बनी
2: एमे बड़ा हिवरु दे बनी मम्मा बाप्पा के फरातों आदि गिना टीचर उनके फरातों में हिवरु दे बे
1: रायन देखे गोतोगा रंगलो लीडर के किबाग कौन सिफत के होने ने
2: रंगलो लीडर के किबाग होने ने जैसी फत को तेरे खेत्तेरी कमा आमानत्तेरी कमा तेदुएरी कंग अधि ऐहम में होना यह तीरां करूं वैसी में ने एक तेरे में वैस खेत्तेरी मामा आडू हम वैसे वारा मुहिम कमे
1: ए रायन मैं वर्ल्ड कप दो सरेनो कौन टीम का सपोर्ट करने
2: अर्जेंटीना
1: हिवत अर्जेंटीना में फहर व्यवस्था शिकंदान है
2: असलो हा बड़ा ही एनो एक लफा करे तो फ्रांस करने के ताशी नगाने एम का टीम वाला वरुग देखो मिहार होती
1: एम ही मरायन वर बदन दो फुटबॉल
2: रायन वर की नंबर ना वर शौगर या कुली वर गई
1: एम ही मरायन उस फुटबॉल को लेता
2: रायन उस स्कूल में आदि मिहारो अंडर 17 टीम को स्कूल में
1: रायन एम बड़ा सपोर्ट करा फुटबॉल खुलन तेरिया की मेसी दो
2: हाँ मेसी एम ही में तो अर्जेंटीना सपोर्ट कराने
1: एहं ही विके मिये ही बस तें फुटबॉल वहाँ का पाववानी क्या? कंकम का मायूस वायर रैन की ने हादनी?
2: रैन बड़ा बजानी एका कंता का में दो नुविसना ए हादन नटता नो। तें कुरियंग वेत्ता का बजा एका रागल का कुरेवन की हिनत तो बिलों।
1: रैन मिहार कुरा एम में बड़े उम्मीद था कि कोबा?
2: मिहार में मासिक के कुरनी ओले बिन रागल नतीजा ने रेवे तो।
1: एका मट्ट का कंका में कुरनी?
2: ट्यूशन का स्कूल का पास पेपर हादा गेगवस बाय फिलावल ता मुतालिया कुरेवे तो बनो।
1: रायन अब इस बार शुक्रिया प्रोग्राम आवागत कर दीनी थी।
0: अलगन में कम दरवार की वस उम्मीद तक होना न दरवारे, ये उम्मीद तक हासिल करना वर्ग ना मस्क तक वस कुरंज है। एको तुम अलगन में स्कूल कैप्टन रायन बिन मुसद में उम्मीद तक हासिल करना कुरे मस्क तक अलगन में नंग हाम वेज।
3: ऐ माहौरी हाँ दरवार वस अजमा का एको कामयाबी अध्ययन में मस्क के कुरच्चे।
0: क्या बैनों तो लवे नोनी मध्य हैं अड़वा हालम
3: वाले बैनों